0: a big, big fan of the original, whether it comes to original movies, music, actors. मुझे ये copy, rehashes, remixes ये सब मज़ा नहीं आता. But कुछ ऐसे गाने हैं जो actually original से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं सुनने में when they are rehashed or remixed. Like this is one of them for sure, at least for me. I don't know, you can tell me whether you like this version of Har Kisi Ko. In the vocals of Arijit Singh, it's playing for you on East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: Spot the Bakwas
2: on East FM, Kenya's premier Asian mix.
0: तो मेरे पास तीन बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं और आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा बकवास. ओके, लेट्स सी. इट्स अ लिटिल, आई फील इट्स अ लिटिल टफ, मे बी इट्स इजी फॉर यू. मंडे है, हम दिमाग को थोड़ा अपने ब्रश करेंगे. ओके, हमारी जो स्किल्स है ना, बॉलीवुड स्किल्स. ओके, द फर्स्ट वन इज शाहरुख खान वॉइस द कैरेक्टर ऑफ मुफासा इन हिंदी डबिंग ऑफ द लायन किंग रिलीज इन 2019. Okay, the second one, Deepika Padukone was the first Bollywood actress to get a wax statue at Madame Tussauds in London. Okay, that's the second one. And third one, RRR was directed by Karan Johar and released under Dharma Productions. Which one is true? Which one is bakwas? You can call me 0711-046-106. Message karlo on 0701-106-106. Apni meethi meethi awaaz mein aap mujhe audio note bhi bhej sakte. Meri awaaz akele mat suno na. Apni bhi sunao, hain? Okay? Retro to right now with Nilufer on East FM.

0: the favourite songs you grew up listening to. And the premiere mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: As playing for News FM, Kenya's premier Asian mix. This is The City Lights with Vishal. And hum baat kare about how do we manage stress after a busy day. So, have you ever... आपने ऐसे किया कि नहीं. सो यू गेट होम, सिट डाउन एंड स्टिल फील लाइक यू आर कैरिंग द होल ऑफिस ऑन योर बैक. द फनी थिंग इज स्ट्रेस डजंट क्लॉक आउट व्हेन वी डू. वी लीव वर्क, क्लोज द लैपटॉप, बट समहाउ आवर माइंड्स आर स्टिल अटेंडिंग मीटिंग्स एंड आंसरिंग ईमेल्स. इट्स लाइक कैरिंग एन इनविजिबल बैकपैक फिल्ड विद डेडलाइंस, ट्रैफिक जैम्स, बिल्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड दैट वन ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन यू कीप रीप्लेइंग इन योर हेड. No wonder we feel tired. You're carrying your luggage that never made it into the baggage carousel. So, आपको कैसा लगता है? How do you manage stress? And I think it's really important because आजकल की दुनिया में जिससे भी बात करो, everybody is saying the same thing that, you know what, I am stressed. So, how do you manage stress? And maybe if you could share a couple of tips and it could benefit someone, you can send me a message on 0701 106 106.

कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला फेस बेबी, शरीफ हूँ मैं।

0: all the favourite songs you grew up listening to. And the premiere mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए